0: ये है लाइका रेडियो।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल।

0: नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आवर रेडियो सेल्स ऑन 0116-471-0697 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
1: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Laika Radio.

होए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहां विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख भाव, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा।

चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए।

नाद अनाहत जुग जुग एकोवेश। आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एकावार, कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एको वेश। एक दूजी बोल लख होवें लख होवें लखवीस लख।

जोर ना जुगती छुटाए संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती छित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच पकाए

ना के हाँ हाँ हाँ और सुनो और सुनो हाँ एक एक परी थी क्या एक परी थी तोता परी हंसी वो बड़ी थी हाँ हंसी वो बड़ी थी गगन देश था उसका क्या गगन देश था उसका अजब भेष था उसका चले रात आगे सुनो सुनो बात आगे सुनो सुनो सुनो तो अरे अरे सुनो तो हाँ

अब क्या करूं, अब क्या करूं? कोई है, कोई है, कोई है? अरे हाँ, जाग गई तुम, हैं? जाग गई। और सुनो, और सुनाता हूँ। हाँ।

0: रेडियो लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 pounds सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99 pieces से शुरू और हर्ज़मैन बटर 20 kg सिर्फ 10.99।
1: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइज़ 10 स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE1 2JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE5 4UN।
2: लिस्टर ना लिटिल गरबा स्टार्स तैयार थे जाओ। KDR इवेंट्स एंड बीच प्रमोशन प्राउडली प्रेजेंट्स किड्स गरबा 2026 विद लाइव फ्रॉम इंडिया सैटरडे 17 अक्टूबर बपोरे 1-4 एट अवंती फील्ड स्कूल लिस्टर। 1-10 वर्ष ना किड्स माटे एंट्री जस्ट 5 pounds। टिकट्स अवेलेबल फ्रॉम टिकट सोर्स और कॉल पीजल 07957477330। मस्ती म्यूजिक एंड फुल ऑन गरबा फन। रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो।
3: The wait is finally over.
4: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
3: Mirzapur is coming to the big screen.
5: Gaddi na to virasat se milti na siyasat se.
3: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawaal.
6: Abhi Kaleen bhaiya hai wo king of Mirzapur.
3: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Only one day to go. Mirzapur the movie releasing tomorrow in your nearest cinemas.
5: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. Dusra koi nahi khulega.
7: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96 एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
8: इस दिसंबर ठंड को बोलो गुड बाय।
9: जॉइन महाराजा टूर्स ऑन अ 14-night कैरिबियन क्रूज डिपार्टिंग 6 दिसंबर विद डायरेक्ट वर्जिन फ्लाइट्स फ्रॉम हीथ्रो टू बारबेडोस। खूबसूरत बीचेस, सनशाइन और 8 अमेजिंग कैरिबियन आइलैंड्स आपका इंतजार कर रहे हैं। प्राइसेस फ्रॉम जस्ट £1,499 पर पर्सन ट्विन शेयर। सीट्स लिमिटेड है तो आज ही बुक कीजिए। विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846।
10: बिग बॉस में इस बार मिलेगा प्रदान और एक्स्ट्रा जीवन दान तब हस्तों में जान।
11: Catch the brand new season of Big Boss, hosted by Salman Khan. Starts this Sunday at 9:30 p.m. and every day on Colors TV and Jio Hotstar. And for the first time, watch a live feed from the Big Boss house only on Jio Hotstar.
12: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
13: London, are you ready? Raga Events presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
14: Dil ne ye kaha hai dil se bole chudiya.
13: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
12: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be Breakfast with Kajal, Drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want. From Dudley to Aston, Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands. This is the largest commercial Asian radio network in the UK.
15: Lagan lag tumse man ke lagan, lagan lag tumse man ke lagan, lagan lag tumse man.
16: Aapka naya station Leica Radio Ghazals bahut jald.
12: Making summer feel better on the Leica Radio Network.

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: Star Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide. Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour. From the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
1: गणपति बाप्पा के आगमन से घर आएंगी खुशियाँ और सुख समृद्धि से सुनहरा बनेगा आने वाला हर पल.
2: Let's celebrate this auspicious occasion with delicious ethnic namkeen varieties of Jaimin snacks along with its khakra, mango pulp, son papri and pickles.
1: Available at ethnic grocery store near you. Ganpati Bappa Moria.
3: It's here. Leica Radio is now broadcasting Birmingham wide on full scale DAB digital radio. Leica Radio in Birmingham is a part of Leica, London's number one Asian commercial radio group.
4: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में.
3: ये है लाइका.

0: में बत्ती, कान में झुमका, नाक में बत्ती, हाथ में जलती अगरबत्ती।
1: अरे नहीं यार, मगरबत्ती। अरे बोला ना अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती।
0: अगरबत्ती का छुआछा बाग पे बैठा पानी ताप।

0: ये है लाइका रेडियो। लेस्टर तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्लेबैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
1: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
3: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
4: The wait is finally over.
5: अब सही सुर लगा रहे मुमताज।
4: Mirzapur is coming to the big screen.
6: गद्दी ना तो विरासत से मिलती है, ना सियासत से।
4: Power, revenge और Mirzapur की गद्दी के लिए फिर मचेगा बवाल।
7: अबे कालीन भैया है वो, किंग ऑफ Mirzapur।
4: पंकज त्रिपाठी एज कालीन भैया, अली फजल एज गुड्डू पंडित और Mirzapur के आइकॉनिक कैरेक्टर्स। ओनली वन डे टू गो। Mirzapur द मूवी रिलीजिंग टुमारो इन योर नियरेस्ट सिनेमाज।
6: Mirzapur में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
8: Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
9: Book now on DiwaliStory.com. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: We're finally going home for the wedding.
11: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
9: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
11: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
9: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
11: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
9: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
12: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
13: Lester, Navratri ni dhammakedar raton mate thai jao ready. KDR Events and Beach Promotions proudly presents Navratri Festival 2026. 11th to 20th October, live from India. Garba, Dandiya, music and a full-on festive vibes. Every night from 7 PM at Avanti Field School, Lester. Tickets just £5 the start. Book your tickets now on Ticket Source or call BJ 07957-477-330. Radio partner, Leica Radio.
14: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
15: Hey, Kathas, you too.
16: इस बार बिग बॉस दे रहे हैं सभी घर वालों को एक नहीं दो दो चांस. So, सेफ खेलने का नो नो चांस. बिग बॉस में इस बार मिलेगा बरदान और एक्स्ट्रा जीवन दान. Kathas, तू मेरी जान.
17: Big Boss 20, starting from Sunday the 6th of September, only on Colors TV. Sky Channel 706, Virgin Media 826, EE396.
18: From Alum Rock to Winston Green, Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midland. This is Cargill on Breakfast.
19: Leica Radio.
20: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.

0: किशोरदार लता मंगेशकर की आवाजों में एक सुपरहिट फिल्म शक्ति, जिसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था और उसमें दिलीप कुमार ने भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था। प्रोग्राम की शुरुआत हुई और उससे पहले आपने गोविंदा और रवीना टंडन की फिल्म दूल्हे राजा से गीत सुना, जिसमें सोनू निगम और जसपिंदर नरूला की आवाजें थी। और इन दो गीतों के साथ लीजिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। आप सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स, और मैं ऋतु शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ आपका साथ देने के लिए, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। आज थर्सडे का दिन है और सितंबर महीने की 3 तारीख हो गई है, और आज ये मौसम उतना ठंडा नहीं है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। पिछले 2-3 दिन से फिर भी गुलाबी ठंडक थी, लेकिन आज मौसम में ठंडक बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि धूप नहीं रहेगी, बादल छाए रहेंगे, लेकिन मौसम अच्छा है, आप आराम से घूमने फिरने जा सकते हैं बिना किसी जम्पर को लिए हुए। तो मौसम अच्छा है, जाना चाहते हैं तो जाइए, और नहीं जाना चाहते हैं तो हमारा साथ दीजिए, क्योंकि आज भी यहाँ से आपको एक नहीं दो नहीं ढेर सारे बॉलीवुड क्लासिक सुनवाऊंगी। और हाँ, सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम, गुड मॉर्निंग।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: So £1 आज आपको देगा 127.65 भारतीय रुपए। लेकिन याद रखिए, ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions भी apply होंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
2: ये है Leica Radio।
3: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
4: The wait is finally over.
5: अब सही सुर लगा रहे मुमताज।
4: Mirzapur is coming to the big screen.
6: गद्दी ना तो विरासत से मिलती है, ना सियासत से।
4: Power, revenge और Mirzapur की गद्दी के लिए फिर मचेगा बवाल।
7: अबे कालीन भैया है वो, किंग ऑफ Mirzapur।
4: पंकज त्रिपाठी एज कालीन भैया, अली फजल एज गुड्डू पंडित और Mirzapur के आइकॉनिक कैरेक्टर्स। ओनली वन डे टू गो। Mirzapur द मूवी रिलीजिंग टुमारो इन योर नियरेस्ट सिनेमाज।
6: Mirzapur में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
8: इस दिसंबर ठंड को बोलो गुड बाय।
9: जॉइन महाराजा टूर्स ऑन अ 14-night कैरिबियन क्रूज डिपार्टिंग 6 दिसंबर विद डायरेक्ट वर्जिन फ्लाइट्स फ्रॉम हीथ्रो टू बारबेडोस। खूबसूरत बीचेस, सनशाइन और 8 अमेजिंग कैरिबियन आइलैंड्स आपका इंतजार कर रहे हैं। प्राइसेस फ्रॉम जस्ट £1,499 पर पर्सन ट्विन शेयर। सीट्स लिमिटेड है तो आज ही बुक कीजिए। विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846।
10: It's back and it's bigger.
3: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Ram Jewelers.
10: On Sunday, 1st November 2026 at the Ramgarhia Centre.
3: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803-240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
10: Exclusive charity partner, Go Dharmic.

0: मीठी धुन बनाई है इस गाने की नौशाद ने, और इस फिल्म में दिलीप कुमार और वैजंती माला ने काम किया था। फिल्म का नाम लीडर, और इस फिल्म के लिए भी दिलीप कुमार साहब को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। आप सुन रहे हैं लाइक अ गोल्ड रेडियो इन ग्रेटर लंदन, लाइक अ रेडियो इन मिडलैंड्स, और इस शो में ऋतु शर्मा आपका साथ दे रही है, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। गुड मॉर्निंग, और आपके ढेरों ढेरों मैसेजेस मुझे मिल चुके हैं।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो चलिए आप सभी को थैंक्स कह देते हैं। महेंद्र बजारिया जी हैरो से, गिरीश जी भारत इंदौर से, हंसा बोरा जी, आंटी जी, प्रज्ञा, सलमा, गुरुदेव गांजा, ज्योति जी, हरीश खत्री जी, हमारे राजेश जी, संध्या भावसर जी, अर्जुन जी, दिव्या जी, तोची जी, हेतु सोलंकी, जासू जी, मिस शेख, भरत गंगाराम जी एंड अनिल सोनी जी वियाना से आप सभी के मैसेजेस मिले हैं। सभी का स्वागत है शो में। और राजेश जी कहते हैं कि क्या आप जानती हैं आज स्काई स्क्रैपर्स डे है। आज स्काई स्क्रैपर्स डे तो है, लेकिन आज कुछ और भी है जिसके बारे में बात जरूर करूंगी, लेकिन फिलहाल

0: राज्यों के लिए भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तेज आंधी और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के चलते उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का पहला CEO नियुक्त किया गया है। उन्होंने अयोध्या पहुंचकर कार्यभार संभाल लिया है और मंदिर परिसर के वित्तीय व प्रशासनिक प्रबंधन जैसे मशीनों से चढ़ावे की गिनती और सुरक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित करने पर काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 100 साल पुराने ऐतिहासिक हिंदू मंदिर को ढहाए जाने की खबर के बाद भारत सरकार ने कड़ा राजनयिक विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पड़ोसी देश से अल्पसंख्यकों और उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है और भारत द्वारा मध्यस्थता अदालत यानी कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के क्षेत्राधिकार को खारिज करने के बाद पाकिस्तान की ओर से द्विपक्षीय बातचीत की दोबारा पेशकश की गई है। भारत का रुख साफ है कि संधि के तहत पानी के बंटवारे और सुरक्षा मानकों से समझौता नहीं किया जाएगा। और उधर अंतर्राष्ट्रीय सराफा बाजार में उतार चढ़ाव है। घरेलू मांग के बीच सोने की कीमतें 152,000 से 156,000 प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट के दायरे में बनी हुई है, यानी कि सोना काफी महंगा हो रहा है। और अब विदेशों से आई कुछ खबरें आपको सुनाते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने ईरान के लारक आइलैंड पर स्थित लॉन्च सिस्टम पर हमले किए हैं, जिसके जवाब में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों की ओर मिसाइलें दागी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि आवश्यकता पड़ने पर अमेरिका और कड़े सैन्य कदम उठाएगा, हालांकि उन्हें उम्मीद है कि ये स्थिति बहुत लंबी नहीं खिंचेगी। उधर नेपाल में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते बाढ़ ने तबाही मचाई है। अब तक 1200 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग लापता हैं। काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने राहत और बचाव कार्यों के बीच भारत द्वारा दी जा रही आपातकालीन सहायता के लिए आभार व्यक्त किया है। और अमेरिका ईरान टेंशन के कारण क्रूड ऑयल की सप्लाई पर असर पड़ा था। ब्रेंट क्रूड अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $95 प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है। तेल कंपनियों ने मुनाफाखोरी रोकने के लिए अमेरिकी प्रशासन ने कीमतों को नियंत्रित रखने के निर्देश दिए हैं। यही थी आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त हुए।
1: Like a radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है। सुपर हिट गाना लता जी और किशोर दा की आवाजों में आपने सुना आपके मन पसंद रेडियो लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर यह है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और आपके ढेरों ढेरों मैसेजेस मुझ तक पहुंचते जा रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब मेरा साथ दे रहे हैं। थैंक यू डीन एंड जी जी, आपके मैसेज के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू अरविंद जी, गाना आपको पसंद आया आपके नाम करते हैं। गुरुदेव गांजा, थैंक यू, आपने फर्स्ट मूवी देखी थी राम और श्याम 40 साल पहले दिल्ली में, ओहो हो, उसके बाद ये फिल्म देखी थी सौतन। चलिए ये गाना आपको आपके नाम करते हैं। और ये मैसेज भेजा है सोनल ने सटन सरे से। सोनल, ये मैसेज मेरे लिए है क्या, जरा चेक कीजिए, कहीं किसी और को भेज रही थी और मुझे तो फॉरवर्ड नहीं कर दिया है। हो जाता है ऐसा कभी कभी। इंदिरा जी फैमिली में हमारा साथ दे रही है। और इसके अलावा राजू आप हमारे साथ, रंजू जी आप हमारे साथ हैं, और जयंत एंड मीना जी, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। प्रतिभा जी गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है इस शो में।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
2: This is Leica Radio. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: तो अगर हॉलीडे जाने की सोच रहे हैं तो साउथ हॉल ट्रैवल को फोन कीजिए ऑन 0208-574-8410 पर। साउथ हॉल ट्रैवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.com. Leica Radio.
3: लेस्टर तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्लेबैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
4: या Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
5: Birmingham, get ready as Surrenderella is back for 2026. Rifko Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Crescent Theatre, Birmingham, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September, and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October. With dance floor bangers by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed Desi Panto fun for all the family. And with tickets from only £15, click rifkotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Radio partner Leica Radio.
6: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
7: Lester and Little Garba Stars, tayyar thai jao. KDR Events and Beach Promotion proudly presents Kids Garba 2026 with Live from India. Saturday, 17th October, Bapore 1 thi 4 at Avanti Field School, Lester. 1 thi 10 varashna kids mate entry just £5. Tickets available from Ticket Source or call PHL 07957-477-330. Masti, music and a full-on Garba fan. Radio partner, Leica Radio.
8: We're finally going home for the wedding.
9: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
10: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
9: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
10: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
9: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
10: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
11: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
12: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
13: बस एक दिन और कल है जन्माष्टमी कान्हा के स्वागत का जश्न मनाइए स्वाद और खुशियों के साथ जैमिन द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया खुशियों का खजाना
2: लाइक अ रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासान
14: व्हेन यू नोटिस समथिंग रॉन्ग इट टेंड्स टू ग्रो एंड इवेंचुअली टेक ओवर टू द पॉइंट यू कांट रियली थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स If something in your body doesn't feel right, the thought it could be cancer can play on your mind. Tests could put your mind at rest. Finding out sooner is always better. Your NHS wants to see you. Contact your GP practice.
15: Hey, gorgeous! Join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
16: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
15: Get your free tickets. Book now using the promo code LAIKA on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
16: Exclusive media partners LAIKA Radio. Sponsored by Sari Pleta, Shana Foods, Begin and Regrow.
2: West Brom to Sparkhill. Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Moon. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
17: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 एम टू 1 पीएम ऑन लाइका गोल्ड रेडियो लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर

0: बुला रहे।
1: जी हाँ, बहुत ही मीठा प्यारा सॉफ्ट रोमांटिक गाना आपने सुना और इसका म्यूजिक था पंडित रवि शंकर शर्मा का। ये थी सुनील दत्त और नंदा की फिल्म जिसका नाम था आज और कल। और संध्या भावसर, निर्मला जी, जैस्मीन, आपको कहना है गाना बहुत अच्छा लगा, तो चलिए आप सबके नाम कर देते हैं। एंड देसराज बसंत जी, स्वागत है आपका भी इस शो में। और राजेश जी ने हमें याद दिलाया था कि आज नेशनल नहीं इंटरनेशनल स्काई स्क्रैपर डे है। और ये दिन जो है वो आजकल की जो लंबी लंबी बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें जिन्हें कहा जाता है उनको समर्पित है। देखिए, हम सब का ध्यान रखते हैं। और इसे जो प्रसिद्ध वास्तुकार हैं लुईस सुलिवन, उनकी जयंती यानी कि आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी होगी, उस पर मनाया जाता है, जिन्हें आधुनिक स्काई स्क्रैपर्स का जनक माना जाता है। और इसके अलावा आज मर्चेंट नेवी डे भी है, और ये दुनिया के कई देशों में, विशेषकर ब्रिटेन में और जो राष्ट्रमंडल डे है वहां मनाया जाता है। और इसके अलावा आज भारत में नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जा रहा है। भारत में 1 सितंबर से 7 सितंबर तक ये मनाया जाएगा, और इसके बारे में बात जरूर करेंगे क्योंकि आजकल जो खान पान है वो बहुत ज्यादा बदल गया है। बड़े लोग तो फिर भी ध्यान रख लेते हैं, लेकिन बच्चे जो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, और आजकल जिस तरह की चीजें आ रही हैं उन्हें पता भी नहीं है कि ये चीजें उनके लिए कितनी नुकसानदायक है। और इसलिए देखिए, मोटापा बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एक तरीका है नेशनल न्यूट्रिशन वीक, जिसमें लोगों को अवेयर किया जाएगा कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं। हम इसके बारे में बात जरूर करेंगे, लेकिन पहले आपको ये बता दूं,
2: ये है लाइका रेडियो। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 127 भारतीय रुपए, 374 पाकिस्तानी रुपए and 165 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Leica Radio.
2: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
1: The gold rate is 105.6 pounds per gram.
2: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
4: Leica Radio.
5: Leica Radio.
6: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
7: That has to be.
6: One performer.
5: Countless personalities. A whole universe of entertainment. Sunil Grover Live UK Tour 2026.
6: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
5: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
6: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
5: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
6: For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Leica Radio Network.
8: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का perfect destination. Rakhi और Ganesh Idols अब available हैं सभी Falcon stores पर. Onam संध्या के लिए pre-bookings भी शुरू हो चुकी हैं. Falcon Snacks 300 grams की full range सिर्फ £1.99 each. Mustafa Dehraduni Rice 20 pounds सिर्फ £13.49. Suhana Khaman Thokla 500 grams सिर्फ £1.99 each या 2 for £2.99. Tilda Grand Basmati 20 kg सिर्फ £29.96. S Motiram Namkeen अब सिर्फ 99p से शुरू. और Herdsman Butter Ghee 20 kg sir 1099.
9: Falcon Cash and Carry 82A Syston Street West Leicester LE1 2JU and 2A Rollout Cell Leicester LE5 4UN.
0: weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything, from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines, and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
7: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
10: To buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
11: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
12: Dubai is the place. 11, 11.
11: Call the Danu Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
12: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
11: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
13: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame grilled chicken to mouth-watering wraps, it's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV11 5BZ. Pepe's Piri Piri, Pepe-licious.
14: You probably think you're pretty good at multitasking behind the wheel. I mean, you have to multitask to drive. So what's wrong with checking your phone? The thing is, your brain simply for quick reply, affects your concentration, and makes you less able to react to hazards. If you use a mobile phone while driving, you're 4 times more likely to crash. Think. Put your phone away.
15: Yeah, like a gold.

गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और इस शो में रितु शर्मा आपके साथ है, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। और ये समय है चिंतन का, चिंतन यानी कि आज का विचार। और आज का चिंतन हम तक पहुंचाया है हमारे बहुत ही प्यारे लिसनर हैं देसराज बसंत जी। थैंक यू सो मच इस चिंतन को हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज के चिंतन में जो खास बात है वो ये है कि माँ जो होती है ना, वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। माओं ने इस बात को बार बार साबित किया है, और कुछ दिन पहले ये बात एक बार फिर से एक माँ ने साबित करके दिखाई है कि अपने बच्चों के लिए माँ किसी भी दुख से लड़ जाएगी, किसी से भी भिड़ जाएगी, लेकिन बच्चों के लिए कुछ भी करने के में वो हिचकिचाएगी नहीं। आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो है महाराष्ट्र के बीड जिले के अंबाजोगाई की रहने वाली 47 साल की महिला, जिन्होंने एक ऐसी मिसाल पेश की जो माँ के दृढ़ संकल्प की कहानी बयां करती है। और इनका नाम है रमाबाई रणवीर। रमाबाई रणवीर ने अपनी बेटी की स्कूल की फीस भरने के लिए मैराथन में हिस्सा लिया, और रमाबाई ने न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि उन्होंने ये दौड़ जीती भी। और जानते हैं रमाबाई रणवीर की ये जीत क्यों खास थी? इसलिए खास थी कि जहां बाकी लोग स्पोर्ट्स शूज ट्रैक सूट पहनकर मैराथन दौड़ रहे थे, वहीं रमाबाई साड़ी पहने नंगे पैर इस दौड़ में उतरी और उन्होंने मैराथन जीत ली। ये दौड़ आयोजित की गई थी इंडियन एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक अमृत महोत्सव था, उसके तहत अमृत दौड़ आयोजित की गई थी जिसमें रमाबाई ने हिस्सा लिया था। और उन्हें इस दौड़ में जीतने का इनाम 3,000 रुपए नगद मिला। और जब उनसे पूछा गया कि वो इन 3,000 रुपए का क्या करेंगी, तो उन्होंने कहा कि इसे मैं अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए यूज करूंगी। आपको बता दें कि ये मैराथन अंबाजोगाई में आयोजित की गई थी और छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से शुरू होकर भाग्यनगर चौक पर खत्म हुई। और इस दौड़ में वहां के बहुत सारे लोकल लड़के लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। रमाबाई रणवीर साधारण साड़ी और चप्पल पहनकर उस कार्यक्रम में भाग लेने पहुंच गईं। लोगों ने जरूर उनकी तरफ देखा होगा और सोचा होगा कि चप्पल पहनकर साड़ी पहनकर क्या कोई मैराथन दौड़ सकता है, क्या कोई मैराथन दौड़ भी ले तो जीत सकता है। उन्हें यही लगा होगा कि ये तो बस यूं ही आ गई हैं। लेकिन वहां पर वो बिल्कुल एक आम प्रतिभागी के तौर पर प्रतियोगिता में शामिल हुई, और दौड़ से पहले रमाबाई को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो ये दौड़ जीतेंगी और विजेता बनेंगी। और जानते हैं जब दौड़ शुरू हुई तो रमाबाई पूरे संकल्प के साथ दौड़ी, लेकिन जब वो दौड़ रही थी तो उनकी चप्पलें फिसलने लगी, जिससे उनकी रफ्तार पर असर पड़ने लगा। तो उन्होंने रुकने की बजाय चप्पलें उतार कर अपने हाथ में ले ली और नंगे पांव दौड़ना शुरू किया। अब चप्पल तो उतार ली, लेकिन साड़ी का क्या करे, साड़ी भी बाधा बन रही थी दौड़ने में। लेकिन रमाबाई को तो जैसे वो 3,000 रुपए नजर आ रहे थे, उन 3,000 रुपए से रमाबाई को लगता था कि अगर ये मुझे मिल जाए तो मेरी बेटी की पढ़ाई में ये बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। और बस इसी संकल्प से
चुनौतियों का सामना करते हुए नंगे पांव सड़क पर रमाबाई दौड़ती रही। उनके पैरों में पत्थर चुभ रहे थे, उन्हें दौड़ते समय अपनी साड़ी को भी संभालना पड़ रहा था, लेकिन इन सब चीजों ने उनके अंदर जीतने का जज्बा कम नहीं होने दिया। वो दौड़ती रही दौड़ती रही, और देखिए उनके इस दृढ़ संकल्प ने उन्हें स्पोर्ट शूज और ट्रैक सूट पहने हुए कई युवा जो साथी थे दौड़ रहे थे उनसे आगे निकलने में मदद की। और रमाबाई की जीत ने दर्शकों समेत वहां जो आयोजक थे उनको भी भावुक बना दिया जब उन्होंने देखा कि एक 47 साल की औरत नंगे पांव पथरीली जमीन पर साड़ी पहनकर दौड़ी और जीती। सबकी आंखों में आंसू आ गए, और जब उन्होंने दौड़ जीतने के बाद बताया कि ये 3,000 रुपए उनके लिए कितने मायने रखते हैं, उनने पूछा क्या करेंगी इन 3,000 रुपए का। उसने कहा मैं अपनी बेटी की पढ़ाई में इन 3,000 रुपयों को इस्तेमाल करूंगी। देखा जाए तो 3,000 रुपयों की आजकल क्या कीमत है, लेकिन रमाबाई के लिए वो 3,000 रुपए एक बहुत बड़ी राशि थी जिसके लिए उन्होंने जान लगा दी। कहते हैं ना, एक माँ अपने बच्चे के भविष्य और शिक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए किसी भी कठिनाई से टकरा सकती है। और ये भी बात सच है कि सही इरादा हो तो हर चुनौती पार की जा सकती है। सफलता महंगे जूते, ट्रैक सूट या आधुनिक सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। असली जीत मजबूत हौसले, लगन और जज्बे से मिलती है। महंगे जूते और महंगे कपड़े तो वहां बहुत सारे लोगों के पास थे, लेकिन जो जज्बा, जो हौसला रमाबाई के पास था, शायद वो उनमें से किसी के पास भी नहीं था। और इसीलिए तो देखिए दौड़ के दौरान चप्पल फिसलने या रास्ते में पत्थरों की रुकावट आने पर भी रमाबाई रुकी नहीं। जीवन की राह में आने वाली बाधाओं को उन्होंने अपनी कमजोरी बनाने के बजाय उन्हें दरकिनार कर आगे बढ़ना सही समझा। और माँ ऐसी ही होती है। कहते हैं ना, जब ईश्वर हर जगह नहीं पहुंच सकता था तो उसने माँ बना दी, क्योंकि माँ से अच्छा तो बच्चे का ख्याल कोई रख ही नहीं सकता। और देखिए ये गाना भी कितना खूबसूरत लिखा है कि उसको नहीं देखा हमने कभी, उसकी भी जरूरत क्या होगी, ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी।

0: और इसीलिए शायद भगवान ने माँ जैसी चीज बनाई, क्योंकि भगवान तो हर तरफ हर किसी के साथ रह नहीं सकता, लेकिन माँ ऐसी होती है जो अपने बच्चों की सुरक्षा की खातिर अपनी जान पर खेल जाती है। कोई उसकी तरफ बुजर कोई उसके बच्चे की तरफ बुरी नजर डालकर तो देखे, कोई उसके बच्चे को कुछ कहकर तो देखे, वो माँ होती है जो लड़ जाती है, भिड़ जाती है। और इसीलिए तो कहते हैं ना, माँ माँ ही होती है। और देखिए, एक माँ ने फिर से अपने बच्चे के लिए वो कर दिखाया जो आजकल मिसाल बन गया, आज मिसाल बन गया। और यस, आप सबने कहा है कि ये न्यूज़ खबर में है, बिल्कुल ये न्यूज़ खबर में है। तो देसराज बच्चन जी ने हमारे साथ ये शेयर किया और कहा कि चिंतन में ज़रूर आना चाहिए। तो बिल्कुल इसीलिए इस खबर को आज चिंतन में आप सबके साथ शेयर किया, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, जिन पर हम चिंतन कर सकते हैं, जिन पर हम विचार मनन कर सकते हैं और उन्हें भी अपने जीवन में उतार सकते हैं। और ये रमाबाई की कहानी, ये जो किस्सा है, ये बहुत इंस्पिरेशन देने वाला है। सो आपको पसंद आया, थैंक यू। लेकिन सबसे पहले देसराज बसन जी, आपका हम धन्यवाद करते हैं। और इसके अलावा विजय घुनोवा जी, सही कहा, हाँ ईश्वर ही माँ है जिसने हमें बनाया है, बिल्कुल सही आपने। ढेर सारे मैसेजेस मिले हैं, थैंक यू नलिनी जी आपके मैसेज के लिए, थैंक यू ललित छत्रिसा जी, कहते हैं चिंतन और उससे जुड़ा हुआ गाना भी हमें बहुत अच्छा लगा, थैंक यू गिरीश जी। आपने भी लिखा है कि यूं ही नहीं कहते कि माँ के पांव के नीचे स्वर्ग होता है, बिल्कुल सही बात है। और जो माँ के चरण स्पर्श करते हैं, माँ बाप की इज्जत करते हैं, वाकई में उन्हें स्वर्ग जरूर मिलता है। और स्वर्ग मिले या ना मिले, उनके मन में शांति जरूर रहती है कि जिन्होंने हमें पैदा किया, जो हमें इस दुनिया में लेकर आए, एटलीस्ट हमने उनके साथ कुछ खराब नहीं किया। लेकिन आजकल कुछ और भी खबरें, कल मैंने एक और बहुत ही दर्द भरी खबर देखी थी जिसे मैं आज शेयर नहीं करना चाहती किसी और दिन बताऊंगी। लेकिन अर्जुन जी, संध्या भावसर जी, प्रीति जी बेल्जियम से, भावना जी, थैंक यू आप सभी के मैसेजेस के लिए। और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। लिखती है कि मम, एक माँ ही ये कर सकती है अपने बच्चे के लिए इतना प्यार, और कौन करेगा। बिल्कुल सच बात है, हमारी ज्यादातर साथी हैं वो माँ भी हैं, तो वो जरूर समझ सकती हैं कि ये जो माँ ने अपनी बच्ची के लिए किया है वैसा एक माँ ही कर सकती है। थैंक यू भारती जी, फतेह पटेल जी, थैंक यू महेंद्र पचारिया जी, रागिनी जी, जगदीश जी बुशी से, अनिल सोनी जी वियाना से, विनोद जी, थैंक यू आप सभी के मैसेजेस के लिए, आपको आज का चिंतन पसंद आया। थैंक यू शेखर जी, थैंक यू निर्मला जी, किरण जी हैरो से, एंड थैंक यू गुरुदेव गांजा जी, थैंक यू। और आपने ये भी लिखा है कि फादर भी बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है कि माता और पिता जो बच्चे के लिए करते हैं वैसा तो कोई और नहीं कर सकता। लेकिन आज क्योंकि माँ की बात हो रही है, इसलिए मैं माँ की बात कर रही हूँ आप सभी को चिंतन पसंद आया, सो थैंक यू साथ देने के लिए। चलिए अब लौटते हैं गीतों की ओर, सुनवाते हैं आपको दो गाने बैक टू बैक।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज वन पाउंड आपको देगा 127.65 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग दी योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई होंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
2: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड्स सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 केजी सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9.90 से शुरू। और Herdsman Butter Ghee 20 kg sir 10.99.
3: Falcon Cash and Carry 82A Syston Street West Leicester LE1 2JU and 2A Rollout Cell Leicester LE5 4UN.
4: Citybound Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
5: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
4: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
5: Also explore 2026 cruises
4: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybound Travel on 01162 167 225. We're Atoll Protected.
1: Creative's Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali on Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham, a memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
4: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
6: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting. Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
7: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिज, है ना?
8: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
7: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
1: एशियन अचीवर्स अवार्ड्स फ्राइडे सितंबर 18th एट लंदन हिल्टन पार्क लेन. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो ग्रेटर लंदन.

0: खूबसूरत गाना सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में। आशा जी और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म का नाम आनंदाश्रम, जिसमें शर्मिला टैगोर थी, साथ में थे उत्तम कुमार। और आपको बता दें कि आज उत्तम कुमार की बर्थ एनिवर्सरी है। कई सारी बंगाली फिल्मों में काम किया है, लेकिन कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम उन्होंने किया है, जिसमें से एक फिल्म थी ये। ज्योति गिरीशा प्रोग्राम सुन रहे हैं, गीतों को पसंद कर रहे हैं। थैंक यू अर्जुन जी, कहते हैं वाह वाह वाह क्या गाना बजा दिया है, मजा आ गया है, सो थैंक यू। एंड थैंक यू विजय गुरुरी जी, अभी हमारे साथ हैं, घर जा रहे हैं, गाड़ी में हैं, और आपने चिंतन भी एंजॉय किया और गीत को भी पसंद किया। काजल फिल्म से छू लेने दो नाजुक होठों को, यस काजल फिल्म भी बहुत अच्छी है और मीना कुमारी और राजकुमार के करियर की एक अच्छी फिल्म है। और आपने ये भी कहा कि हमें कभी भी अपने पेरेंट्स के सेक्रीफाइसेस को नहीं भूलना चाहिए। आपने ये भी बताया कि आपके पेरेंट्स ने ही आपको यहाँ यूके पढ़ने के लिए भेजा और आज आप जो कुछ भी हैं उन्हीं की वजह से हैं। और बात बिल्कुल सच है, माता पिता का एहसान तो कोई कभी चुका ही नहीं सकता, इसलिए उनके साथ नम्र रहें, विनम्र रहें, प्यार से बात कहें। और कभी अगर कोई बात आपको अच्छी भी नहीं लगती तो सुन लें। आजकल बच्चों को ये लगता है कि उन्हें ज्यादा समझ है, माँ बाप को तो कुछ पता ही नहीं, लेकिन जो उम्र का एक्सपीरियंस है, जो जिंदगी का तजुर्बा है, जो खुद भुगती हुई चीजें हैं, अगर वो पेरेंट्स आपको कुछ बताते हैं तो सुन लीजिए, उसमें कुछ नुकसान नहीं है, कभी ना कभी वो चीजें आपके फायदे की ही रहेंगी, काम ही आएंगी। सो थैंक यू आपके मैसेजेस के लिए मानू जी, थैंक यू दिनेश पोपट जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी साथ दे रहे हैं। तो चलिए आपको ये खास खबर सुनवा दें। तो भाई दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो, जिसे आपके लिए लाए हैं NKN मीडिया, एक बार फिर से लौट कर आया है 5 और 6 सितंबर यानी कि दिस वीकेंड एट लंदन हिल्टन पार्कलैंड। और जहां पर आप मिल भी सकते हैं, यानी मिल सकते हैं या नहीं पता, लेकिन जहां पर आने वाले हैं अरबाज खान, जैकलीन फर्नांडिस, चित्रांगदा सिंह एंड नरगिस फाकिरी। फ्री एंट्री है, रजिस्टर कीजिए NKNPropertyExpo.com पर। और एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइका रेडियो।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: और आपके मैसेजेस बता रहे हैं कि आप सब हमारे दीवाने हैं, यानी कि लाइका के दीवाने हैं। तो चलिए ये गाना आप सभी के नाम पर करते हैं।

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: Like Extra Podcast Update.
3: तो आपको याद दिला दे एक बार फिर से कि लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का नया एपिसोड आ गया है और इसका टाइटल है द दिवाली स्टोरी शोकेस और जिसे होस्ट किया है राजबधन एंड खुश ने। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेज़न, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर।
0: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
4: लेस्टर तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्लेबैक सिंगर अमंत्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
5: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 0786-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.

0: Star Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Birmingham, get ready as Surrenderella is back for 2026. Rifco Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Crescent Theatre Birmingham Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October. With dance floor bangers by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed Desi Panto fun for all the family. And with tickets from only £15, click rifcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Radio partner Leica Radio.
2: We're finally going home for the wedding.
3: I know.
4: Or abhi abhi to weather bhi.
5: We will be there.
6: Flights booked, outfits packed, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
5: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
6: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
5: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
6: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
7: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
8: महाराजा टूर्स के साथ इस नवंबर एक्सप्लोर कीजिए सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड, सेंटोसा आइलैंड, बाटू केव्स, जेंटिंग हाइलैंड्स, बैंकॉक के फ्लोटिंग मार्केट्स और ब्यूटीफुल टेंपल्स, फिर पटाया और इनका मजा, फैंटास्टिकल फार ईस्ट फ्रॉम सिर्फ £2,799 पर पर्सन, फ्लाइट्स, फोर स्टार होटल्स, इंडियन खाना और अमेजिंग एक्सकर्शंस सब इंक्लूडेड. विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846.
9: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
10: Lester, Navratri ni dhammakedar rato mate thai jao ready. KDR Events and Beach Promotions proudly presents Navratri Festival 2026. 11th to 20th October, live from India. Garba, Dandiya, music and a full-on festive vibes. Every night from 7 PM at Avanti Field School, Lester. Tickets just £5 a ticket now on Ticket Source or call BJ 07957-477-330. Radio partner, Leica Radio.
7: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
11: Punjab di biggest tunes.

0: लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते लाइकारेडियो.com ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी पंजाबी.
1: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today.
0: Like a goal. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे. द लाइका रेडियो नेटवर्क, द परफेक्ट साउंडट्रैक फॉर अ ब्रिटिश समर हीट वेव.

0: लता जी और किशोर कुमार की आवाजों में सिलसिला फिल्म से था ये गाना, और उससे पहले आपने गीत सुना सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं, कुमार शानू की आवाज। शाहरुख खान की पहली सुपरहिट फिल्म दीवाना से लिया था ये गाना, जिसमें उनके साथ थी दिव्या भारती, जो बहुत ही छोटी सी उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चली गई। और लीजिए दो बैक टू बैक गीतों के साथ ये प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर है, जिसमें आप सुन रहे हैं मुझे और मेरा नाम है ऋतु शर्मा, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। और अभी अभी अगर जुड़े हैं तो भाई आपने दो घंटे में बजने वाले गीतों को तो मिस कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, आपका स्वागत है इस आवर में। और फारूक मोहम्मद जी धन्यवाद आपका, आपने मैसेज भिजवाया है। और अब सुनवाऊंगी आपको आर्टिस्ट ऑफ द वीक का गाना, और आप जानते हैं इस बार की हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक है ब्यूटीफुल नेपाली बाला माला सेना, उनका गीत बजाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले एक खास इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, और ये जो संदेश है ये है मर्सिडीज बेंज वंस की ओर से, लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स एंड लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। ध्यान से सुनिए, जब आप खुद का बिजनेस चलाते हैं तो आपकी वैन सिर्फ आने जाने का साधन नहीं होती, बल्कि आपकी रोजी रोटी और इज्जत सब उसी पर निर्भर करता है। इस सोच के साथ मर्सिडीज बेंज वैन्स लेकर आया है अप टाइम प्रॉमिस। आपके बिजनेस को लगातार चलाते रहने के लिए अनेक फायदों का एक पैकेज, जैसे 24/7 रोड साइड असिस्टेंट, ज्यादा देर तक वर्कशॉप का खुला होना, गाड़ी की रियल टाइम मॉनिटरिंग और भी बहुत कुछ। यानी आपकी वैन के खराब होने पर आपके बिजनेस को बिना रुके आगे बढ़ाते रहने के लिए आपको जो कुछ चाहिए वो सब मिलेगा अब एक ही जगह। मर्सिडीज बेंज वैन्स आपके साथ है, आज ही मर्सिडीज बेंज वैन्स सर्च करें और अप टाइम प्रॉमिस के बारे में और जानें। नियम और शर्तें लागू होंगी, मर्सिडीज बेंज वैन्स अप टाइम प्रॉमिस, कुछ पात्रता मानदंडों, वाहन की अनुकूलता और मर्सिडीज बेंज के अधिकृत रिपेयरर से सर्विस करवाने पर निर्भर करता है। नियम और शर्तें भी लागू होंगी, अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए mbvans.co.uk/uptimepromise पर।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो वन पाउंड के बदले में आज आपको मिल सकते हैं 127.65 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर आप करवा सकते हैं बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप, और टर्म्स एंड कंडीशंस भी लागू होंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Radio. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
2: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
3: નમસ્કાર, માર્ચ 2027માં મહારાજા ટૂર્સ સાથે માણો જાપાનનું અદ્ભુત ચેરી બ્લોસમ સીઝન. આવો અને જુઓ જાપાનનું સુંદર ચેરી બ્લોસમ, શ્રેષ્ઠ સાઇટ સીન, સ્વાદિષ્ટ ઇન્ડિયન જમવાનું અને ઘણા બધા યાદગાર અનુભવો. માત્ર 4,499 પર પર્સન, જેમાં ફ્લાઇટ્સ, એકોમોડેશન અને એક્સકર્ઝન બધાનો સમાવેશ છે. સીટ્સ લિમિટેડ છે, એટલે આજે જ તમારું બુકિંગ કરો. મહારાજા ટૂર્સ, તમારો વિશ્વસનીય ટ્રાવેલ પાર્ટનર. જાપાન તમારી રાહ જોઈ રહ્યું છે.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
5: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96 एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
6: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
7: आई है फिर से हैप्पी वाली फीलिंग लेके दिवाली।
8: It's back and it's bigger.
9: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Ram Jewelers.
8: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
9: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803-240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
8: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
10: बस एक दिन और, कल है जन्माष्टमी। कान्हा के स्वागत का जश्न मनाइए स्वाद और खुशियों के साथ। जैमिन, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया, खुशियों का खजाना।
11: If I'm going out on my new paddleboard, the last thing I'm taking is my phone, right? Buoyancy aid, fine, but mobile? My whole life's on that phone. Why would I risk losing it in the Coast Guard? Help!
12: Okay, help's on its way.
13: Grab my hand.
11: Phone. In a waterproof pouch. It's the first thing I pack now.
14: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
15: Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.

0: जी हाँ, रफी साहब की आवाज में कन्यादान फिल्म से था ये गाना, जिसमें शंकर जय किशन का म्यूजिक था और हमारे ज्योति गिरीश शाह कहती है वाह वाह वाह क्या गाना है, आपको पसंद आया। चलिए आपके नाम करते हैं। हिमांशु पटेल जी, थैंक यू, आप हमारा साथ दे रहे हैं। और साथ ही साथ भारती जी एंड महेंद्र बजारिया जी, थैंक यू आप सभी के मैसेजेस के लिए।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो चलिए आगे बढ़ने से पहले, अगला गीत सुनाने से पहले हम आपको याद दिलाते चलें कि द 20th सीजन ऑफ बिग बॉस इज बैक, जिसे एक बार फिर से सलमान खान ही होस्ट कर रहे हैं। और ये शो शुरू होने वाला है एवरी डे एट 9:30 PM ऑन कलर्स टीवी एंड जियो स्टार फ्रॉम दिस संडे 6th September। और फॉर द फर्स्ट टाइम जियो स्टार इसके ईच एंड एवरी एपिसोड को स्ट्रीम करेगा अलोंग विद अ लाइव 24/7 फीड फ्रॉम द बिग बॉस 20 हाउस। तो जियो स्टार इज नाउ अवेलेबल एज एन ऐप ऑन स्काई टीवी।
3: लाइका रेडियो। This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: तो अगर आप हॉलीडे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो साउथ होल ट्रैवल को कॉल कीजिए, क्योंकि उनके पास दुबई के लिए बड़ी अच्छी डील्स है. उन्हें फोन कीजिए 0208-574-8410 पर. साउथ होल ट्रैवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड.

0: लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते लाइका रेडियो .com ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी पंजाबी.
1: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken, with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app, where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount, plus a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
2: This is the largest commercial Asian radio network in the UK.
3: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 01164710697 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

समझी। अरमानों के खुले दरीचे आजा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे 85 झटके। हट तेरा।

अरे जाती है क्यों परे परे, तेरी जिंदगी में आ जा प्यार को बता दूं मैं, पास अगर तू आ जाए।

0: पचासी चटके हो तेरा रंग है नशीला अंग अंग है नशीला रंग है नशीला अंग अंग है नशीला हाय हाय
1: मोहम्मद रफी साहब की आवाज में सावन बादो फिल्म से था ये गाना जिसमें सोनिक ओमी का म्यूजिक था और ये फिल्म रेखा और नवीन निश्चल की डेब्यू फिल्म थी और इस फिल्म से डेब्यू किया था रंजीत ने जो अपने जमाने के एक जाने माने विलन भी थे सो ये गाना था और अब बहुत ही कम समय रह गया है अब मेरे पास इस शो में तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे
2: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: वैसे आज है 3rd September और आज शक्ति कपूर जो आंखें निकालकर गोटी खेलते हैं आज उनकी बर्थडे है और साथ ही साथ आज हम सभी के फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के जो प्यारेलाल जी हैं वो भी अपनी जन्मदिन मना रहे हैं आज 86 इयर्स की हो गई और आज अगर आपकी भी बर्थडे है तो हमारी ओर से आपको भी हैप्पी वाला बर्थडे
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: तो £1 आज आपको देगा 127 भारतीय रुपए, 374 पाकिस्तानी रुपए and 165 बांग्लादेशी टकास.
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Leica Radio.
2: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
1: Gold rate is 105.6 pounds per gram.
2: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester or call 0116-266-4278.
3: Leica Radio.
1: तो लीजिए आज का साथ बस यहीं तक अगला गीत आपको लेकर चलेगा न्यूज तक और न्यूज के उस पार बाली ब्रह्म भट्ट आपके साथ होंगे लेकिन कल जन्माष्टमी का त्योहार है तो कल हम और आप साथ मिलकर जन्माष्टमी मनाएंगे और कल मेरा फास्ट होगा तो नो फूड पिक्चर्स खाने पीने की फोटो मत भेजिएगा कल उनकी खास मनाही रहेगी क्योंकि मुझे पता है कल बहुत सारे साथी फास्ट करेंगे कल बहुत बड़ा दिन है बहुत बड़ा त्योहार है तो अच्छे अच्छे गाने भी बजेंगे और मुझे चाहिए आपका साथ तो बस कल जन्माष्टमी मनाएंगे धूमधाम से आज के लिए बस इतना ही अगला गाना सुनिए मस्त रहिए खुश रहिए और मुझे आज्ञा दीजिए मिलती हूँ कल आपसे तब तक के लिए
4: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.
2: Yeah.
3: Leica Radio.
5: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
6: The past.
7: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड सिर्फ 13.49 सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99 टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96 एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg sir 10.99
8: Falcon Cash and Carry 82A Syston Street West Leicester LE12JU and 2A Rollout Cell Leicester LE54UN
9: Leicester na Little Garba Stars taiyar thai jao KDR Events and Beach Promotion proudly presents Kids Garba 2026 with live from India Saturday 17th October bapore 1 thi 4 at Avanti Field School Leicester 1 thi 10 varsh na kids mate entry just £5 tickets available from ticket source or call PHL 07957477330 masti music and a full on garba fun radio partner Leica Radio
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान। देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410। दैट्स 8574-8410।
10: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड। हेरल्ड, न्यू वर्ल्ड ऑफ इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल्स फॉर रेस्टोरेंट्स, कैफेज, केटरर्स, फूड टेकअवेज एंड फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑर्डर योर फ्री हेरल्ड कैटलॉग टुडे। कॉल ऑन 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
11: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
12: Birmingham Hodge Hill, this is not a drill. Pepe's is now open at 606 to 608 Bromford Lane. Get your chicken rice, chicken XL, flame grilled wings, strips, burgers, burritos and banging salads, all packed with Pepperlicious flavour. Birmingham, come and get it.
11: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour, from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
13: From Tamworth to Albury, Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands.
14: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals or stunning photography and videography, for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at imaginexglobal.com or WhatsApp 0758-580-18 to 01 and let your ideas take center stage. Imagine X Global, where creativity, technology and humanity unite the world.
15: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
13: Gold Afternoons with Bali Brambat on Leica Radio Midlands.
16: Manoranjan with Ravi Sharma.

0: is Like a Gold across Greater London.
1: And believe you me, I'm so excited in presenting this show today. Because Lakshmikant ji aur Pyare ji, Pyare Lal ji ke saath ek achha rishta tha mera. Gaano ka rishta nahi tha, lekin dosti ka rishta tha. Jab bhi London aata tha, Lakshmikant ji bolte the, wo biscuit ka tin le aana. बिस्किट तेरे चाय मेरी. फिर मैं जाता था, हम दोनों बैठ के जोक्स मारते थे और बिस्किट खाते थे. और प्यारे जी ने मुझे कहा कि तुम इतने अच्छे लड़के हो, लंदन से दूर आए हो और घर का खाना यहाँ मिलता नहीं है, तो मेरे घर आया करो. और भाभी जी मुझे कहती थी, ब्लेस हर सोल, शी पास्ड अवे रिसेंटली, एंड सुनीता भाभी मुझे हमेशा कहती थी कि आलू के पराठे तुमको पसंद है. मैंने कहा बहुत ही पसंद है. एंड शी यूज टू हार्टीली प्रिपेयर आलू के पराठे विद चटनीज एंड रेड एंड ग्रीन. शी यूज टू गिव मी अ चॉइस. तो जब भी मैं बैंड्रा की साइड जाता था तो मैं कहता था, अगर मुनासिब है तो मैं आ जाऊं, मुझे मन कर रहा है कि मैं आलू के पराठे खाऊं. एंड देयर इज कौन सी चटनी, मैं बोलो लाल, इस बार लाल, नेक्स्ट टाइम ग्रीन. ऐसे मजाक होता था हमारा. एंड कभी इनके सामने मैंने शराब नहीं मैं पीता था. वो जब भी मुझे बोलते थे आप क्या लोगे. फिर मेरा एक दोस्त यहाँ लंदन से, शाह दोस्त, वो विपुल करके, विपिन, वो आया था वहाँ पे. तो बोलता कि लायंस क्लब के थ्रू हमने या कोई रोटरी क्लब के थ्रू हमने एक शो करना है. तो मैं उसको ले गया. तो प्यारे जी बोले कि आज तो तुमको मेरे साथ बैठ के एक ड्रिंक मारनी पड़ेगी. सो देन दैट वॉज द फर्स्ट टाइम. His favorite used to be Red Label. So I had one drink with him. And Pyare Ji ke saath ek aisa rishta tha ke har ek birthday pe Shiv Sena ke corporator jo the unke saath main jaya karta tha Pyare Ji ko happy birthday karne ke liye. To hum phoolon ka guldasta le jate the unki birthday pe, unke ghar pe. And ek baar inhone hame ek achhi treat di thi. Bolte ke main kabhi bhi मतलब शराब पी के कभी कोई इंस्ट्रूमेंट मैं नहीं बजाता हूँ. उनके घर में जो पियानो था, तो पियानो के रूम में बोलते कि पहले मैं आपको गाना सुना देता हूँ, फिर उसके बाद हम ड्रिंक लेंगे. सो ऐसा किया. उन्होंने जाके पहली बार मुझे पियानो पे दोस्ती का गाना सुनाया था. एंड हम हर बर्थडे पे शिशिर शिंडे, वो कॉरपोरेटर का नाम है जो मुझे पहली बार ले गए थे उनको मिलने के लिए. सो उसके बाद हमारा ट्रेंड रहा था. एंड पिछली बार मुख्तार शाह जब यहाँ आए थे, तब प्यारे जी का बर्थडे था, तो हमने पूरे ऑडियंस को गवाया था एक प्यार का नगमा है. और वो वीडियो हमने प्यारे जी को भेजा एंड ही वाज सो हैप्पी बिकॉज सारा लंदन का ऑडियंस गा रहा था. एंड जो वहाँ ऑडियंस में थे वो लोग जानते होंगे कि हमने ऐसा किया था. दिस वॉज एट 27 काम. सो आज प्यारे जी शर्मा को हम 86th हैप्पी बर्थडे कहते हैं एंड विशिंग हिम अ लॉन्ग हैप्पी हेल्थी लाइफ. तो हर एक जॉनर का गाना जो है, नेक्स्ट जॉनर होगा इट विल बी द क्लब जॉनर, दैट इज कैबरे जॉनर. हमने दो जॉनर सुनाए थे, मैंने 14 जॉनर्स उनके इकट्ठे किए हैं. मुजरा जॉनर है, हैप्पी जॉनर, सैड जॉनर, फिर उसके बाद पार्टी का जॉनर है, फिलोसॉफिकल है. तो ये सब सुनते जाइएगा. आप दो घंटे लगेंगे मुझे, तो बातें कम और काम ज़्यादा. पैसा पैसा वो तो था हमारा डिस्को वाला, और उसके बाद था यारी वाला, अब नेक्स्ट होगा कैबरे वाला.
0: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: And £1 in British sterling can get you up to, let's see what the latest rate is, 127.65 Indian rupees. 127.15 Indian rupees to a British sterling pound. Don't forget to exchange in branch, online or SBI YONO mobile app. TNCs apply.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert is proudly sponsored by Jaimin Foods, your trusted name for dal bhat, pav bhaji, biryani and so much more. Available now at your nearest Asian shops. Jaimin Foods, the authentic taste of India.
3: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar. Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
4: Birmingham, get ready as Surrenderella is back for 2026. Rifko Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Crescent Theatre Birmingham Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October. With dance floor bangers by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed Desi Panto fun for all the family. And with tickets from only £15, click rifkotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Radio partner Leica Radio.
3: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
5: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
6: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
7: Lister, Navratri ni dhammakedar raato maate thai jao ready. KDR Events and Beach Promotions proudly presents Navratri Festival 2026. 11th to 20th October, live from India. Garba, Dandiya, music and a full-on festive vibes. Every night from 7 p.m. at Avanti Field School, Lister. Tickets just £5 the start. Book your tickets now on Ticket Source or call BJ 07957-477-330. Radio partner, Leica Radio.
0: It's here. Leica Radio is now broadcasting Birmingham-wide on full-scale DAB digital radio. Leica Radio in Birmingham is a part of Leica, London's number one Asian commercial radio group. Listen back to your favorite shows by logging on to leicaradio.com and selecting Midlands or the mobile app.
8: LemFi means quicker and safe way to send money.
9: LemFi means low transaction fees and great exchange rates.
8: LemFi means £10 sign-up bonus on registration for transactions over £50. Just use the code LEICA.
9: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh with LemFi. Download the LEMFI mobile app today.
10: LemFi is registered by the FCA. T's and C's apply.
11: It's a dog walk. I do it every day at home. I don't need to plan it. Check the tide. Check my phone. Why do I need to take my...
12: Hey, boy!
13: Coast Guard, we're stuck.
14: Okay, help's on its way.
13: Hold on, mate.
15: Shoes, tide, phone.
16: Back before dark, love. Okay.
17: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
15: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
12: Like a Cool. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par. DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold. Aur online suno likeagold.com pe. Feel Good Track. Brought to you by Dairy Valley.
18: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: ये गाने सुनकर दिल खुश हो जाता है क्योंकि दे वर अमेजिंग 30 years, मोर देन 3 decades इन्होंने रंग जमाया. एंड लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल, उनमें जो एज का डिफरेंस था, लक्ष्मीकांत जी वॉज 2 years and 10 months ओल्डर देन प्यारेलाल शर्मा. क्योंकि प्यारे जी की बर्थडे देखो 3rd of September 1940 और 3rd of November 1937 में लक्ष्मीकांत जी का जन्म था. सो देर वॉज 2 years and 10 months का फर्क था, लेकिन दोनों का भाईचारा, ओ माई गॉड, दे रिमेन्ड इन द टॉप फॉर नियरली 3 decades सिंस 1960s, 70s, 80s, रीचिंग देयर करियर्स पीक. And when the era of S.D. Barman, then Shankar Jaikishan, O.P. Nair, Naushad, Madan Mohan, Roshan, Khayyam, it came to an end. Wo era jab khatm hone laga, tab aa gaye the Lakshmikant Pyarelal.
1: Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at leicaradio.com, via Alexa, or by using our Leica Radio mobile app.
0: Har ek genre mein se ye genre hai. It's a ghazal genre, lekin ghazal ka genre in romantic style. Ghazal style romance.

0: It's such a beautiful moment to listen to all these songs. You know, 635 films. अभी इसमें से हजारों गाने उसमें से बैठ के चुनना, तो मैंने सोचा कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के गाने तो मतलब 12 महीने, यू कैन से 12 मंथ्स ऑफ द ईयर, 24/7 हर रोज लाइक अ गोल्ड पे आप सुनते रहते हैं. तो उनमें से चूज कैसे करूं मैं, क्योंकि जैसे ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नाम आ जाता है तो दोस्ती फिल्म का गाना ही आ जाता है. फिर हमको पता कि पारस मनी का पहली फिल्म थी उनकी, तो उसके गाने याद आ जाते हैं. मतलब अमर अकबर एंथनी, जुम्मा चुम्मा दे दे, ये सब गाने जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के टॉप 10 में आया करते थे. ऑफकोर्स आफ्टर पारस मनी 1963 में, जैसे मैंने अर्लियर ऑन कहा था कि वीकली बिना का गीत माला जो आता था तो 16 गाने आते थे, उसमें से 8 तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के हुआ करते थे. एंड देन एनुअल बिना का गीत माला जो आती थी उसमें 32 गाने होते थे, उसमें से 15 गाने तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के ही होते थे. मतलब गाने आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, लेकिन थोड़ा चूज करना था कि कौन से जॉनर में मैं करूं. सो अलग अलग जॉनर मैंने चूज किए, और ये सब जॉनर्स मैंने जो चूज किए थे वॉज क्लब एंड डिस्को वाला, देन पार्टी एंड डांस वाला, देन हैप्पी एंड प्लेफुल. एक बड़ा अच्छा, आई एम गोइंग टू एंड माय शो विद दैट हैप्पी एंड प्लेफुल सॉन्ग एज वेल, एंड अ लिटिल बिट ऑफ इमोशनल गाना एज वेल, एंड सैड एंड मेलेंकोलिक गाना आपने सुना अभी, लंबी जुदाई फिल्म हीरो का. फिर फिलोसॉफिकल एंड रिफ्लेक्टिव गाना जो होता है, तो वो गाना मैं एक हमारे वंडरफुल दोस्त कहो, वंडरफुल लिसनर ऑफ लाइका गोल्ड कहो, या तो हमारे अच्छे मित्र और हमारे पूरे लाइका गोल्ड के परिवार के मित्र, और उनको हम हैप्पी बर्थडे करने वाले हैं. सो हमारे कमलेश भैया, थैंक यू वेरी मच, आवर हेड ऑफ मार्केटिंग हु टोल्ड मी अबाउट द बर्थडे, एंड वी आर गोना रियली क्वालिटी फूड्स के जो मालिक है उनका बर्थडे जो है, तो उनको हम हैप्पीली विश करेंगे. और स्वाहिली में, दैट्स राइट, विपुल सेदानिया जी आपके लिए गाना भी चूज किया है, एंड मिमिता फाया विम्बो या इले नासेमानिनी आफियांजेमा गुड हेल्थ दैट इज, यू नो, एंड फॉर योर हेरी या कुजालीवा, दैट्स अ हैप्पी बर्थडे, हेरी या कुजालीवा, दैट्स राइट, स्वाहिली में बोलेंगे हम. बड़ा मजा आने वाला है आज. तो थर्ड आवर में आई वुड लाइक टू टेल यू हाउ द फैमिली ऑफ ब्लू रूम्स गॉट टूगेदर, द फैमिली ऑफ ब्लू रूम्स, नरेश भाई, फिर हमारे महेश आरियल, एंड वी गॉट अनीसा एंड दिलीप भाई, एंड ऑल द फैमिली, दे गॉट टूगेदर एंड डिड अ ट्रिब्यूट, आई मीन अ पर्टिकुलर शो फॉर द कलेक्शन ऑफ चैरिटी फॉर द नेपाल फ्लड्स, फ्लड विक्टिम्स, एंड दे कलेक्टेड £51,000. एंड आई वुड लाइक टू से अ स्पेशल थैंक्स टू लायंस क्लब एज वेल, हु हैड एक्चुअली डन द होल थिंग, लायंस क्लब ऑफ सडबरी, हु हैड बीन ग्रेट ग्रेट हेल्प, बिलीव यू मी. Can't forget Dipti also of the Blue Room family. So Nepal ka fundraising jo hua. Dusra, of course, Sona Rele. You remember the daughter of Uma Pujara and Shailesh Pujara. I talked about The Voice, and I mentioned how we are so proud at Laika Gold for her coming into the next round. She was chosen overwhelmingly by the judges of The Voice. And Sona Rele actually sent me a message. You won't believe this. Here we are. Let me try to get that particular message that she had sent to me, saying thanks to Laika Gold and how fond she is of the radio as well. And I was chuffed when I heard this message of Sona Rele. Sona Rele, I wish you nothing but all the best. We saw you growing from a little child and going into America and becoming a great, great superstar, a pop star. Here is Sona's message to us, and I hope I can put the volume loud.
1: Hi, Bali G. Just wanted to say thank you so much for all the love that you guys have been giving me. Keep watching. Stay tuned. I'm so excited. Sending so much love to Like a Gold.
0: Oh, isn't that beautiful? I'd like to hear it again.
1: Hi, Bali G. Just wanted to say thank you so much for all the love that you guys have been giving me. Keep watching. Stay tuned. I'm so excited. Sending so much love to Like a Gold.
0: And we wish you luck as well, because you're in the next round, and on Saturday we shall be glued to the television to watch The Voice. Yes, with Tom Jones sitting, Will I Am sitting right opposite you. Wow.
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can get you up to 127.15 Indian rupees. 127.15 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
2: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
4: महाराजा टूर्स के साथ इस नवंबर एक्सप्लोर कीजिए सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड, सेंटोसा आइलैंड, बाटू केव्स, जेंटिंग हाइलैंड्स, बैंकॉक के फ्लोटिंग मार्केट्स और ब्यूटीफुल टेंपल्स, फिर पटाया और कोरल आइलैंड का मजा. फैंटास्टिकल फार ईस्ट फ्रॉम सिर्फ £2,799 पर पर्सन. फ्लाइट्स, फोर स्टार होटल्स, इंडियन खाना और अमेजिंग एक्सकर्शंस सब इंक्लूडेड. विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846.
5: आई है फिर से हैप्पी वाली फीलिंग लेके दिवाली.
6: Back and it's bigger.
2: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
6: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
2: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803-240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
6: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
7: Birmingham, get ready as Surrenderella is back for 2026. Rifko Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Crescent Theatre Birmingham Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October. With dance floor bangers by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed Desi Panto fun for all the family. And with tickets from only £15, click rifkotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Radio partner Leica Radio.
8: Leicester na Little Garba Stars taiyar thai jao. KDR Events and Beach Promotion proudly presents Kids Garba 2026 with Live from India. Saturday 17th October, Bapore 1 thi 4 at Avanti Field School, Leicester. 1 thi 10 varsh na kids mate entry just £5. Tickets available from Ticket Source or call PGL 07957477330. Masti, music and a full on Garba fun. Radio partner Leica Radio.
9: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
10: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
11: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
10: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
12: वंदे रामम सदैव मर्यादा पुरुषोत्तमम लोकनाथम श्रीराम श्रीराम।
13: Diwali Story, The Journey of Ram and Sita.
14: Book now on DiwaliStory.com. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
15: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London. Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at LeicaRadio.com. It could be Breakfast with Kajal, Drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to LeicaRadio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want.
16: I can't wait for our holiday. Sun, sea, no work.
17: Same, but how are we supposed to use our phones abroad? Roaming costs a fortune.
16: Not with SIMZI. You get data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
17: And I can keep my number for WhatsApp and bank OTPs. Exactly. Plus, it's flat rate, so no bill shock and you're ready in just 3 minutes.
16: Brilliant. And there's 10% off with Roam Free 10.
17: SIMZI, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at SIMZI.com. Terms apply.
18: Officially, London's number one Asian retro music station, available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa, and LeicaGold.com.
15: Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester, and the Midlands, with the UK's biggest Asian hits. L Y C A. This is Leica.
19: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड, मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड, रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे.
0: And of course, we talk about holiday breaks. Then Southall Travel is known for its competitive holiday deals to Dubai. Contact Southall Travel today on 0208-574-8410. Southall Travel is at all protected.

जब मैंने गाना सुना नहीं था तो मैंने कहा रफी साहब और आशा भोसले, जब सुना तो पता चल गया इमीडिएटली कि दिस इज लता जी एंड नॉट आशा जी। एंड रफी साहब और आशा जी ने गाया फिल्म जाल, 1967 की फिल्म। लेकिन अवर आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैपनिंग टू बी माला सिन्हा विद बिस्वजीत इन द 1967। ओ माय गॉड, दैट वाज अ रियल रियल सस्पेंस थ्रिलर। एंड म्यूजिक बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ऑफ कोर्स विशिंग प्यारे जी हैप्पी 86th बर्थडे। और भी मैं आपको न्यूज देना चाहता हूं, एंड दैट न्यूज हैपेंस टू बी बिग बॉस इज बैक। द 20th सीजन ऑफ बिग बॉस इज बैक, होस्टेड बाय सलमान खान। द शो एयर्स एवरी डे एट 9:30 PM ऑन कलर्स टीवी एंड जियो हॉटस्टार from this Sunday, 6th September. And for the first time, Jio Hotstar will stream every episode along with a live 24/7 feed from the Big Boss 20 house. Jio Hotstar is now also available as an app on Sky TV. Okay, dusra news sunenge. बताता हूँ आप इतने एक्साइट क्यों हो जाते हो। ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट कविता कृष्णमूर्ति। कविता कृष्णमूर्ति लाइव परफॉर्म्स एट रॉयल आल्बर्ट हॉल ऑन संडे 1st November, ब्रॉट टू यू बाय सनातन इवेंट्स एज अ दिवाली स्पेशल। टिकट्स फ्रॉम द वेन्यू बॉक्स ऑफिस, दैट इज रॉयल आल्बर्ट हॉल। एंड आई स्पोक टू नितिन जी, yes, Nitin Palan, who is in Paris at the moment on the opening of the temple there. Exclusive radio partner, Laika Radio Network. And not only that, we've got Laika Radio Network confirming a partnership with the premium hospitality brand Ragasan. Details at laikaradio.com. And last but not the least, the Dubai Property Expo, brought to you by NKN Media.

0: to Laika Radio 90s. 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s.
1: 90s. 90s.
2: Hey, Kathas, you too.
3: So इस बार बिग बॉस दे रहे हैं सभी घर वालों को एक नहीं दो दो चांस. So, से खेलने का नो नो चांस. बिग बॉस में इस बार मिलेगा वरदान और एक्स्ट्रा जीवन दान. Kathas, तू मेरी जान.
4: Big Boss 20, starting from Sunday the 6th of September, only on Colors TV. Sky Channel 706, Virgin Media 826, EE396.
5: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler, committed to value, quality and transparency. That's a Malabar promise.

के भी बस की हो आके पकड़ ले, इनसे गेम क्रैक की नहीं हो रहा ना, हिट कोई ट्रैक की नहीं हो रहा ना, यहाँ फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कम बैक की नहीं हो रहा। बादशाह है नाम मेरी जान, प्यार से मुझको वो डैडी बोलती है, गेम में लॉन्डो का बापू बेबी, एक तू ही थोड़ी है जो मुझे डैडी बोलती है।

लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते लाइका रेडियो .com ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी पंजाबी द सन इज आउट विद लाइका रेडियोज

0: such a beautiful track. It's Nika Vita Krishnamurti ki awaaz ke saath.
1: The Radio Wally roller coaster flies back into the 90s. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester, and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
3: वी आर फाइनली गोइंग होम फॉर द वेडिंग.
4: No, I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
3: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
4: That's why I'm using Simzy. Data in 220-plus destinations with 4G and 5G where available.
3: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
4: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
3: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
1: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at Simzy. Terms apply.
5: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96, एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
6: It's back and it's bigger.
1: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers,
6: on Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
1: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803-240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
6: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
5: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96, एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
1: From Great Bar to Perry Bar, Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands, a true Radio Wally cracker classic. Name the 90s number. This is Leica.
7: Saathi mere, sun to zara.
8: Haan, main sun rahi hoon. Bolo. चुप क्यों हो गए? बोलो, बोलो ना.

0: नजर से नजर मिलाई जा रही है। झांझरिया की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। आई सी लव दिस वन। Of course, not on the vocals. And of course, cannot wait for him to be live in concert at the end of the year. Exclusive radio partners, aapka apna Laika. Lots of love coming in for this one, saying, oh my God, Radio 1, it's been ages since we had a little bit of Janjariya. I told you, aaj sari yaadein taza kar dungi.
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Like a radio.
1: The Radio Wally roller coaster flies back into the 90s.
4: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
5: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 pounds सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99 पीस से शुरू और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99।
6: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE54UN।
7: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at 3 Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton 3 Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
8: लिस्टर नवरात्रि नी धमाकेदार रातों माटे थई जाओ रेडी। KDR इवेंट्स एंड बीच प्रमोशंस प्राउडली प्रेजेंट्स नवरात्रि फेस्टिवल 2026 11th to 20th October लाइव फ्रॉम इंडिया। गरबा डांडिया म्यूजिक एंड फुल ऑन फेस्टिव वाइब्स एवरी नाइट फ्रॉम 7 PM एट अवंती फील्ड्स कोन। लिस्टर टिकट्स जस्ट £5 दी स्टार्ट। बुक योर टिकट्स नाउ ऑन टिकट सोर्स और कॉल BJ 07957477330। रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो।
9: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
10: बस एक दिन और, कल है जन्माष्टमी। कान्हा के स्वागत का जश्न मनाइए स्वाद और खुशियों के साथ। जैमिन, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया, खुशियों का खजाना।
1: From Acock's Green to Small Heath, Laika Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full scale DAB. This is Laika Radio Midlands. From Yardley to Walsall, Laika Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Laika Radio Midlands. Turn up the heat with Laika Radio's summer hits.

0: तेरी।
1: सुनो लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते, laikaradio.com ते Alexa play लाइका रेडियो पंजाबी। पंजाबी। Listen back to your favorite shows by logging on to laikaradio.com and selecting Midlands or the mobile app.
2: Laika Radio.
1: Pay close attention and name the film of the

0: Laika Radio.
1: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colours TV and Jio Hotstar.
2: It's back and it's bigger.
1: Laika Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vom Jewelers.
2: On Sunday, 1st November 2026 at the Ramgarhia Centre.
1: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803 240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
2: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे'ल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410. दैट्स 85748410.
1: साउथ हॉल ट्रेवल एट ऑल प्रोटेक्ट.
2: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 02039635757 to arrange your meeting.
5: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals or stunning photography and videography, for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at imaginexglobal.com or WhatsApp 0758 580 180 and let your ideas take center stage. Imagine X Global, where creativity, technology and humanity unite.

0: listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now.
1: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
2: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203 7736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
3: We're finally going home for the wedding.
4: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
3: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
4: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
3: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
4: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in